0: महासंचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो महासंचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।